0: gebo ta na hi zhe zhe wo de ni zha zhe hi de ge chong ma ngo ngo qiao de mo ni xi li nong le chan chan jin zhu de ni zhe ni xie zhu ji chai zhe
1: o ri ri mo ta nao ji lao ri ni
0: ta mo zha dong ge ma niu zha cha ru zhe ta ta chong mo zha mo yi gong le ta du zhu de ka la ya sa ga li ka mo zha mo ye zhe zhe yo de ta de mi nong chong la ma dong yu xiu ta de li mo ni xie xie lang ko nan zhu
1: और ये गेम जो जितला जिप सिंह हो मछुमा के गेग मोटा तो न्यू से जेजो लंका का मांस दे देना नो येंदा ला यांस से चाव रियो होयो बजो जो जटा मुन्यो दो संग तंगा मोटा तो तो मट ताते ले गेम गने जेजो लंका दी पेंडो रे
0: रे रे तंगा ह गिंग के का शाम बत की छि इन रो तिन मो ने ला सान रो रे और रे रे
1: रे लंका क्यों तो हमें
2: छाया
0: बस के छना से छु थे में नी सी बिन रे को यो गोया पोता
2: Koyola, Bazo Chimbo Mayo Vichi, Tami, Jeju Lankola, Maza Yona, Yapuyo.
3: Jeju Lamba, Mauna Yang.
4: Denyan Jeju, Sawaji.
3: Jeju Nazu Jungla Tu, Kore Nyuzi, Sili Gorti, Matonga Dang, Kore Jinjan Dola Matonga, Chora Doni, Kore Matonga, Kore Kunga,
4: ཚང་མ་ཡེ་བ་ཅི་ཤ་ཅི་གཅིན་པོ་རེ་དེ་ཅིན་ང་ཅི་འདེན་འདྲེ་ཅི་སོང་ལ་སུང་ཅི་ཡུ་ནི་འདོ་ལ་དེ་ཡ་ཏ་ཡ་རེ་ཤུ་སོང་ལ་དེ་ཉན་འདོ་ལ་ཤ་ཏུ་ཡོ་ཤ་ཅི་གེ་ནི་ཤེ་དེ་དེ་ཡ་ཏ་དེ་འདེན་འདྲེ་ཅི་ཁོ་ཡོ་ཅེ་ཁྱི་མོ་

0: 芒族的开片呢，开片更加早晚隐形。芒族雄就蓝背头学的呢，数据难看了就透明三顶地样一把车。屯里大姐呢，相中大姐同位，我们就贴近一把当。拉看农民娘里扛个一把当，屯里拉丁呢，白白就蓝不对的。中山多起同位，芒也顶得动员。大地前，拉看农民娘里扛呢，没那规律类型，屯里加多起位，娘里空心隐形。谈可了相中卡比江，请俺娘娘好像写吧，用个一把车。第二，北京农村年轻人共看给农村家，俺当一举比徐南西北来进囊。北京那区中区半关中下琼乡，拉看农民雄就年轻们呐，南看拉定有些的，蒙区第一过年看到西医院比，切记三把，该是些。
1: 是大堂的，这两年过来，送用的大家书记这两年下下的去，人力又在大地上动脚了吧？
2: 对的。
1: 大堂的这七点钱用的，你们在的全用的也不差多吧？
2: 啊，对的。
1: 那这样书记这两没给给省拿了了，样子甘肃给省不交了吧？
2: 对的。
1: 这是钱呢？
2: 他哪有个这个省拿拿钱的？他这跟那的这钱，他你个里个里来的哪有个干面叫不了去用了吧？他第哪有个没给他拿的？他那就像这芒草跟稻草那种轻松的，我山里想着他山那个那是解放那做个嘛嘞，这山那个那干那的，他他用力气用的这体力压力，这下他冬季的山区冬季的那个干里这都流血，叫啥子芒草，他用体力压力给骗的这个，他是那个这山区那乌兰的这芒草了，我这里的这是让你个山那那了，解放那他，刚才那他连个出皮的，他这天上山那的，他那里个这山那当地了的，碰到那个他这温州那的，说说。罗东三里乡是大的，
1: 那是。但他书记来空了松松，你们得救助点是吧？
2: 啊，你去救助。
1: 哦，你去救助，说是白想想，第一说是白说是这些救助是的钱呢，白想想那这个这个钱好多三角了，像实际上是这两个三路上当的都是跟他说救助给等这三路好不嘞？
2: 那是了，他这哪路上三路当的？
1: 那是。
2: 他哪里个这个这个门那头当这个地方搞这个嘛嘛吃是吧？搞这个。让让说说个个年，靠这个他，咱们现在都有这些。咱们中堂现在这些老了些的地方了，他们说跟平地个那门中堂现在干部些晓得没力气。他这些弄的，那个年纪里个他，他年纪小里个他皮够皮够的呢。这三三老当当当当他，屯里个这家里人弄的，屯他，你这个家里个家里个他不那么的屯子，他跟俺里个这屯里个一下子做说个他妈朝代里朝代干了，他当年三老当的时候，他就从门庭外头拉都出门去了。他上面个他压大的他，当用的这种工作，他这当用的说这个三老强的还是逃过去了。做地甲这上面个他让木了哇，他就说个他的门庭外那得了，那把去了嘛，俺们这个三老了哇。现在。他要打上这个什么当地的彭丽哥干的这个满足的开篇的钱的要打上了呢他我从做地价的这里满足做钱做可是我们年年做一个三期完了但他年年的不是一动完了这我这个他不知道你干哪去了他都是说送的嘞这个我如果三个当天大哥在里年了过了这里是可能完了
1: 他等到这样满足拿落了等到的没那的规矩起来了别家现在如今那个空了松松，他去罗里拥抱三年呢，拥抱个前个的呀，重庆那里呀，爹家样，过来呀，就得了八百样，干么爹呀是吧？
2: 好对对对，
1: 得了样子，他肯定说的，样面那就龙珠个国学的他，国语的的国学讲了呀嘛，不要有了吧？
2: 好对对对，
1: 对对样子的这。满足那罗样子三家啥的的样子的这，那的员工们都是年轻的要嘛的呗？
2: 真的。कि तन नंदा करे मंदु ये माता संग ये मन्यर क्यों माजी कोने मदों तो दाम सी तुम्हीला से लास दूं ते कर्मा अधिकार से ते मा ता ठीक कम समय से ते ते ते से सन्ये योरे तंदा क्यों शुद्ध शरीर दरों ते सुन्जी लेता तेरे सन्ये मंदो
1: ते तंदा चंचू ना ले रहे चित्र चे कर्मा थोमें जो रुवा
2: हो रे
1: तो शुद्ध
2: चुक स तासो कर्मा जा रहे कर्मसांत है कुपन्ना कर्मसांत ही मुझे गुणमो जाल कर्मा जो तो तक ते जी
1: लास
2: सुनो चावन काही के मरे रे न्यारे रे कर्मा निहित आप दिन्जी नाम रोते ते चूज़े ले निहित सुंचे सुंचे में हो मा
1: लास
2: काही काही यों बाप शेर रे शेर के तूले सुंचे सो दे सिंग रोल
1: तूड़ा
2: आह ता तुम ᱛᱚᱱᱡᱮᱱ ᱢᱚᱭᱟ ᱠᱷᱚᱱᱤ ᱛᱟᱛᱮ ᱢᱚᱥᱩᱜᱤᱭᱟ ᱞᱤᱜᱮ ᱜᱮ ᱥᱮᱴᱟᱯ ᱛᱮ ᱪᱩᱵᱡᱩ ᱫᱟᱛᱤ ᱥᱚᱦᱟᱱ ᱞᱮᱢ ᱢᱟᱛᱮ ᱢᱤᱠᱥᱩᱠ ᱡᱟᱜᱟᱞᱟ ᱛᱟᱢᱮ ᱜᱮ ᱭᱟ ᱡᱮᱞᱮ ᱜᱚᱨᱛᱚᱱ ᱫᱤ ᱠᱟᱡᱚᱵᱮ ᱭᱟ ᱛᱤ ᱞᱚᱛ ᱞᱮ ᱛᱟᱞᱤ ᱦᱤᱱᱟ ᱨᱟᱥᱤ ᱜᱨᱟᱢᱟ ᱛᱟ ᱛᱚᱠᱥᱤ
1: ᱠᱚ ᱥᱟᱱ ᱛᱟᱢᱮᱱ ᱜᱚᱞ ᱯᱟᱜᱩᱨ
2: ᱵᱟ ᱛᱟᱢᱮᱱ ᱜᱚ ᱯᱟᱢᱨᱚ ᱛᱟᱢᱮ ᱜᱮ ᱥᱮᱴᱟᱯ ᱛᱮ ᱛᱟ ᱛᱤ ᱜᱮ ᱪᱟᱨ ᱜᱮ ᱛᱚᱠᱥᱚ ᱭᱟ ᱛᱮ ᱜᱚᱨᱡᱤ ᱛᱮ ᱥᱚ ᱛᱚᱠᱥᱤ ᱥᱚ ᱭᱟᱨᱟ ᱜᱟ
1: ᱥᱚ ᱛᱟ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱪᱤ ᱥᱟᱱ ᱫᱟ ᱪᱚᱱᱫᱮ ᱥᱤ ᱵᱮ ᱱᱮ ᱛᱟ ᱢᱟᱝ ᱡᱮ ᱧᱟᱢ ᱫᱮᱢ ᱫᱩᱜ ᱫᱚ
2: ᱦᱚ ᱫᱟ ᱫᱟ ᱫᱟ
1: ᱫᱤ ᱫᱩᱭᱟ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱥᱩᱡᱤ ᱛᱤᱨᱟᱱ ᱥᱚ ᱭᱩᱥᱮ ᱪᱚᱱᱥᱚ ᱨᱟᱯᱠᱟᱱ ᱱᱩᱢᱟᱨ ᱨᱚ
2: ᱟᱨᱮ ᱨᱮ
1: ᱛᱮ ᱭᱟ ᱪᱤ ᱜᱟᱱ ᱠᱤᱱᱫᱮ ᱥᱚ ᱨᱮ ᱞᱚᱵ ᱡᱚᱱ ᱥᱤ ᱨᱟ ᱭᱚ ᱱᱮ ᱥᱚ ᱨᱵᱮ ᱭᱟ ᱪᱤ ᱧᱟᱢ ᱧᱚᱱ ᱫᱮ ᱪᱤ ᱠᱚᱱᱥᱚ ᱪᱤ ᱞᱟᱯᱛᱟ ᱥᱮ ᱫᱮ ᱭᱚ ᱱᱮ ᱤᱴᱤᱨ ᱵᱟ
2: ᱭᱚ ᱨᱮ ᱪᱷᱚᱛᱚ ᱭᱚ ᱨᱮ
1: ᱱᱟ ᱥᱮ
2: ᱫᱟ ᱛᱮᱱᱮ ᱪᱷᱚᱛᱚ ᱭᱚ ᱨᱮ ᱛᱟ ᱛᱤᱥᱤ ᱡᱤ ᱧᱟᱢ ᱧᱮ ᱡᱟ ᱪᱮᱫ ᱵᱤᱱ ᱧᱮ ᱢᱟᱭ ᱱᱮ ᱫᱟ ᱪᱮ ᱛᱟᱱ ᱞᱚ ᱨᱮ ᱱᱟ ᱛᱮᱱ ᱡᱟᱯ ᱪᱷᱮ ᱛᱮᱱ ᱨᱚ ᱞᱚᱵ ᱡᱚᱱ ᱪᱤ ᱜᱟ ᱭᱩᱝ ᱧᱮ ᱭᱚ ᱨᱮ ᱛᱟ ᱛᱮᱱ ᱠᱮ ᱛᱟᱱ ᱦᱤᱭᱟᱨᱮ ᱪᱷᱟᱨᱮ ᱭᱚᱝ ᱨᱮ
1: ᱧᱟᱢ ᱧᱚ ᱯᱮᱨᱮ ᱨᱚ
2: ᱧᱟᱢ ᱧᱚ ᱯᱮᱨᱮ ᱥᱤ ᱛᱟ ᱭᱩᱝ ᱨᱮ ᱛᱟ ᱧᱟᱢ ᱧᱚ ᱯᱮᱨᱮ ᱥᱤ ᱩᱱᱤ ᱠᱤ ᱛᱩ ᱡᱤᱱᱟᱢ ᱱᱟ ᱞᱟ ᱛᱮ ᱥᱚ ᱥᱚ ᱜᱮ ᱛᱟᱢᱵᱚ ᱛᱚᱢᱟᱨ ᱡᱚ ᱩᱱᱤ ᱠᱟ ᱠᱟ ᱪᱷᱟᱜ ᱫᱟ ᱛᱚ ᱥᱚ ᱭᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱡᱚ ᱵᱚ ᱛᱟ ᱞᱚ ᱛᱚᱱ ᱥᱤ ᱡᱤ ᱢᱮᱞ ᱠᱤ ᱯᱮᱱᱨᱤᱛ ᱛᱟ ᱞᱚ ᱛᱚᱱ ᱥᱤ ᱡᱤ ᱢᱮᱞ ᱛᱮ ᱥᱩ ᱵᱚ ᱛᱟ ᱢᱟᱱ ᱥᱚ ᱛᱟᱨᱩᱝ ᱞᱟᱜ ᱯᱟᱨ ᱛᱟ ᱢᱟᱱ ᱥᱚ ᱠᱤ ᱢᱟᱞ ᱯᱮᱱᱨᱤ ᱥᱤ ᱪᱮ ᱠᱤ ᱛᱚ ᱫᱮ ᱢᱚ ᱥᱩ ᱜᱮ ᱪᱮ ᱠᱤ ᱢᱟᱞ ᱨᱤ ᱠᱤ ᱛᱟ ᱫᱚᱱ ᱥᱚᱝ ᱜᱚ ᱫᱤ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱚ ᱛᱮ ᱭᱟ ᱪᱟᱨ ᱧᱚᱱ ᱨᱚ ᱛᱮ ᱵᱚᱡᱨᱚ ᱟ ᱛᱤ ᱜᱮ ᱞᱮ ᱠᱷᱟᱛᱤ ᱜᱟᱱ ᱛᱟᱨ ᱟᱨ ᱠᱷᱟᱛᱤ ᱦᱤᱭᱩᱵ ᱪᱮᱱ ᱵᱚ ᱞᱮ ᱛᱮ ᱠᱟ ᱥᱮᱠ ᱛᱚ ᱥᱚ ᱫᱮ ᱯᱮᱱᱨᱤ ᱛᱚ ᱥᱚᱝ ᱱᱟ ᱢᱚᱥᱚᱢ ᱢᱤᱢᱟᱱ ᱱᱟ ᱥᱮ ᱥᱚᱝ ᱜᱚᱜᱤᱭᱟ ᱫᱩᱯᱟᱨ ᱢᱟᱱᱤ ᱚᱨᱚᱵ ᱫᱟ ᱫᱮᱝᱜᱟᱞ ᱚᱵ ᱡᱚᱱ ᱥᱮ ᱢᱮᱝᱜᱮ ᱱᱟᱨᱩ ᱜᱮ ᱠᱚᱢᱜᱤ ᱱᱚ ᱯᱮᱱᱨᱤ ᱥᱚᱝ ᱱᱟ ᱛᱮ ᱢᱟᱱᱥᱚᱜ ᱠᱟ ᱜᱮ ᱜᱟᱱ ᱞᱤᱱ ᱨᱚᱱ ᱨᱚ ᱯᱮᱱᱨᱤ ᱛᱚᱯ ᱫᱮᱨᱟ ᱛᱟ ᱧᱮᱝᱠᱮ ᱜᱟᱱ ᱫᱩ ᱢᱚ ᱫᱚᱱ ᱛᱚ ᱫᱟᱢ ᱦᱤᱭᱩᱵ ᱪᱮ ᱦᱩᱨᱤ ᱛᱮ ᱦᱮᱱ ᱠᱟ ᱜᱮ ᱠᱟᱥᱤ ᱛᱤᱱ ᱱᱟ ᱛᱟᱱ ᱫᱤᱱᱪᱩ ᱛᱟ ᱛᱟᱱ ᱞᱚ ᱛᱚᱱ ᱢᱟᱥᱤ ᱦᱮᱭᱟᱨ ᱜᱮ ᱛᱮ ᱯᱮᱱᱨᱤ ᱛᱮ ᱛᱚᱯ ᱜᱮ ᱨᱤ ᱫᱮᱭᱟᱱ ᱛᱮ ᱤᱪᱤ ᱨᱚ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱥᱤ ᱫᱮᱞ ᱜᱤᱱᱟ ᱱᱟ ᱛᱮ ᱞᱚᱨᱟᱨ ᱜᱚᱱᱫ ᱞᱚᱨᱟᱨ ᱤᱱᱟᱱ ᱛᱮ ᱴᱮᱪᱟᱯ ᱪᱮ ᱧᱮᱦᱤ ᱢᱟᱱᱫᱟ ᱢᱟᱱᱫᱟ ᱱᱮ ᱭᱟ ᱢᱟᱱ ᱥᱚᱜ ᱜᱟᱛᱤᱱ ᱫᱤᱱ ᱡᱚᱥ ᱪᱮ ᱪᱮ ᱫᱤᱱ ᱨᱚᱡᱤᱵᱟ ᱛᱚ ᱥᱤ ᱛᱮ ᱚᱱᱟ ᱨᱤ ᱛᱟᱭ ᱤᱱᱟ ᱛᱮ ᱛᱮ ᱭᱟ ᱜᱚᱠᱭᱟ ᱠᱭᱟ ᱵᱩᱝ ᱞᱮᱜᱮ ᱡᱩᱨᱮᱢ ᱛᱚ ᱥᱩᱠ ᱱᱟᱱ ᱢᱟᱱ ᱥᱚᱜ ᱜᱟ ᱥᱮ ᱯᱟᱢᱮ ᱥᱮ ᱧᱚᱨᱟ ᱞᱟᱯ ᱫᱤᱱᱮ ᱛᱟ ᱭᱟ ᱠᱚᱢᱟ ᱛᱟ ᱛᱮ ᱛᱟ ᱯᱟᱨᱛᱩ ᱛᱨᱟ ᱪᱚᱝ ᱧᱚᱢ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱠᱚ ᱠᱟᱱ ᱡᱮᱥᱟ ᱡᱮᱛᱟᱢ ᱵᱟ ᱢᱟᱱ ᱥᱚᱜ ᱛᱮ ᱯᱮᱫ ᱜᱟᱥ ᱛᱚᱯ ᱛᱟᱨᱟ
3: ཞོ གི ལ ག ང ཡི དུ ཞོ ཡི ཚན ཅི ནི རོ ཞོ ཡི ང ཚུ མ ཚེ སེན གི གི ག ང ལི ནམ པར ཅ བ ཤེ གུས